कत हूँ सुचे तुह के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनू प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

गायत्री को गुपत जप्यो, कौ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहू को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहू को

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहां न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

दानु यकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कहना बने ता परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी है पीछे नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना किराया ते सतनाम भला हो जाए, तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया। यो आया वा जी, कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना सड़ा चढ़ाना, उहदे पिछे मैनूं जाणा पै रिहा। पता नहीं हुण कईआं को की कुछ लिया नकली। कार्ड आ जाए व्याह है जी, मदद करो। असीं फिर बाबे दे आ खुल के कही गए, तू कार्ड ले आया मदद ली गया तो व्याह है बच्ची का व्याह है, उसी आप कथा की थी पैर सेवा कर ली। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए, किन्नियां संस्थावां कोले कार्ड लैके मदद मंगणगे। जे सच दसेंगा तो आ 1300 पिया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई वार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना लै, इथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो, तुसीं वेखणा नकली भी। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची का विआह है, एक तो जरूर जा भावें 10 मिनट लई जा, तेरे जाण नाल ओदा माण वधेगा। एक ओनू 4 गुणा सगन भावें लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, जे गुरु नानक वेले का इतिहास फरोलो ना, दो भरा सुनदे हो ना सूरज प्रकाश शिया गजण दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवे शिया गजण विआह सी ना शिये दी कुड़ी दा, ओ बरात जदों आई सी ते उन्होंने आंदिया कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी। क्या कहने उदों रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी 2-2 रातां, हुण ते रवाज बदलदे जा। उन्हां कहा 7 दिन ते उहनूं फिकर लग गया सी आम चारा सिख, कहिंदे जिन्ना इलाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों क्यों दोवें नाम जपण वाले आखो सतनाम करना 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छकदी रही संगत छकदी रही, तोट नहीं आई संगत बोड़ गई आखो सतनाम।

Addig ráadásul. अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे।

anan sauda par karke kirtan di samapti ardas hovegi hukmanama kada prasad di dekh bachiyan valon gurmukh parivar valon jo seva hai oh vi pravan karni to aao hun anan sauda par sare milke kariye an guru nanak padshah meherban sadguru आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्होंने आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेट गाउंड अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो।

गुरु गोबिंद सिंह भाई नंद लाल जी गोया फारसी दे विद्वान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन सेवक ए शब्द लिखदे आया कहंदे ने बेकसां रा यार गुरु गोबिंद सिंह अनाथां दा बेआसरिया दा निथावियां दा थां न्यासरिया दा यार गुरु गोबिंद सिंह सुखी दा हर कोई यार बनदा है पर दुखिया दा यार कोई विरला बनदा है कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह हर काम करन वाले गुरु गोबिंद सिंह अनाथां बेकसां

मंग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है। पर गुरु साहिब जी कहंदे ने दुख तदे जा विसर जावे, भुख व्यापे बहु विधता। इंसान दुखी उदू हुंदा है जदों वो रब नूं भुला दिंदा, क्योंकि रब नूं भुला के वो माड़े कर्म करदा, विकारां विच पै जांदा, फिर शरीर नूं रोग लग जांदे। ते जिहड़ा इंसान रब तों दूर नहीं हुंदा वो कदी दुखी नहीं हुंदा। दुनिया विच निगाह मार के देख लो कि चमक दमक वाले किन्ने क सुखी ने, असी लोग किन्ने क सुखी हां अपने अपने मना विच खुद देख लई। ए राजकुमार, भुख बड़ी लगी, पैसा कोल कोई नहीं, मंग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है, पर कहंदे ने भुख बहुत बुरी। एक पिंड विच ए जिवें दाखल होया, किसे कुल मंगण दी हिम्मत नहीं पैंदी। एक छोटा जिहा कतूरा देखिया, उस कतूरे नूं इस युवराज ने चुक के कच्छ विच मार लिया कि किधरे अग मिले इनू भुन के खावा। मन कहंदा ए हराम है, ए नहीं खाना चाहिदा, पर पेट कहंदा हलाल है, क्योंकि भुख लगी हुई। पिंड दे बाहर आया, किधरों अग मिले इनू भुन के खावा। दूर सारे एक काफला नजर आया, उस पासे तुर पिया। इसने देखिया कुछ आदमी समान बन दे पए ने, कुछ नौजवान बजुर्गां दी सेवा करदे पए ने। ए उन्हां दे कोल जाके खड़ा हो गया, इस नूं खलोता देखिया। उस काफले विचों दो आदमी कोल आए, पुछ देने भाई कौन है तू, की चाहिदा। ए पठान राजकुमार उन्हां दोनों आदमियां वाल देख के बड़ी हैरानगी नाल पुछदा है, तुसी गुरु नानक दे सिख हो, क्योंकि मेरे अब्बा हजूर क्या करदे सन कि गुरु नानक दे सिख सिर ते पग बनदे ने और ओ दाढ़ी भी रखदे ने, सिर दे वाल भी रखदे ने। तुहाडे सिर ते पग है, दाढ़ी भी है, कि तुसी गुरु नानक दे सिख हो। ओ कहन लगे हां भाई, असी गुरु नानक दे सिख हां, पर तू कौन है। इसने अपनी सारी हालत दसी कि किवें मेरे चाचे ने राज बदले, मेरा सारा परिवार खत्म कर दिता है। उन्हां दोनों सिखां विच एक वैद भी सी, उन्हें अंदाजा ला लिया यह काफी दिनों का भुख है। पठान है एक राजकुमार, जे मैनू कवां तो कई दिनों का भुख है, इनू बुरा लगेगा। सिख ने कहा खान साहब कुछ फल फ्रूट खा लो, असी सारे आनंदपुर साहब अपने गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तू भी साढ़े नाल चल।

खा लो अगे चल के असी तुहानू प्रशादा छकावांगे खाना खुआवांगे। इस राजकुमार ने कतूरा उथे ही रख दिता। इन्हां संगतां दे

सारी संगत रुकी, लंगर तैयार होया। एक पासे कीर्तन हो रहे है, एक पासे लंगर पक रहे है। उन्हां सिखां ने इस राजकुमार वास्ते खिचड़ी बनाई, जिदे विच देसी घिओ पा के इनू खाण वास्ते दिती। कईआं दिनां दा भुखा सी, इह खिचड़ी खा रहे है। सारी संगत इहदे दुआले बैठी है, इह सारिआं दे मूंह वल देखदा है। सारिआं दे मूंह ते इसनूं प्यार नजर आया, अखां विच अपनापन नजर आया। सारे इहदे कोल बैठे ने कि किसे तरह असी इहनूं खुश करिए, इहदी खुशी प्राप्त करिए, इह दुखी ना दिखे। खिचड़ी खांदा इह राजकुमार रोण लग पिया। इहनूं रोंदा देखिआ तां सिखां ने पुछिआ, ऐ युवराज की गल है, तेनू किसे ने कुछ कहा है?

शिवा की दी और बाणी सुनाई जिथे एदे तन दा कोड कटिया गया मन दा भी कोड कटिया गया। भाई बाणे दे चरण पकड़ दे मेरे लिए तां तूं रब बन के आए जिसने मेरा परलोक भी ते लोक भी सवार दिता है। मेरा क्या जीवन सी जे तू ना मिलता पता नहीं की हाल होना। हुण कृपा कर जिस गुरु ने तेरिया चोलियां भरिया हन उस गुरु दे मैनू भी दीदार करा दे। मेरिया अखां तरस दईआं हन मेरा भी जीवन सफल कर दे। भाई पाने ने जदों इस साकत पुरुष दा प्यार वेख्या समझ गए कि इसकी सुती हुई सुरत जाग उठी है। इसने सच नूं पछाण लिया तां अलाहाबाद तो फिर श्री हरिमंदर साहब विखे अकाल तखत साहब विखे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक विराजमान हन। संगतां जुड़ियां हुईआं हन। भाई पाना अते ए पुरश आके जदों चरणा ते नमस्कार कीती नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो देते। ज्यों ज्यों चरणा नूं लिपटदा अंदर दा शीशा साफ हो रहे हजूर ने बख्शिश दे घर विच आके आख्या जाओ भाई तुसी निहाल निहाल निहाल होयो। तां इस नूं लंगर दी सेवा दे दित्ती और सारा जीवन ए पुरख लंगर दी सेवा करदियां गुरु की खुशियां मानदियां अपना लोक परलोक सवार गया। तो हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं भाई पुन दान जो बीज दे जेड़े हंकार करके बीज दें वो तां धर्म राज कोल जाने ते जेड़े तन मन धन गुरु का समझ के बीज बो रहे हैं ओ फिर गुरु कदे उन्हां नूं धर्म राज दे वश नहीं पावेगा। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच लीन।

साथ मिलियो बड़ भागी गुरमुखां दे दर्शन हो गए तन ते मन दा कोड कटिया जा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल बिख गए गवा जा सतगुर साहो पाया वडदाना महापुरखा ने जोड़ दिता सच दे नाल ते फिर लोक परलोक सौर गया।

लीला चलत वखाण दा अंतर जामी ठाकुर पावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव बारे उपदेश करते हैं, जिस तरह के आप कल दे दीवान विच विचार कर रहे सां, जयदेव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। जयदेव त्याग्यो अहंगमेव नाई उदर्यो सैन से। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो संसार ते एक ऐसे गुरु हन जिन्हां ने अपनी गोद दे विच हर धर्म हर वर्ण दे भगतां नूं अपनी गोद विच बिठाया, ना इत्थे कोई जात पात दा सवाल ना ऊंच नीच दा, इत्थे इक्को ही उपदेश है, सबे सांझी वाल सदाएं कोई ना दिसे बहरा जी। इत्थे कोई बेगाना नहीं, ये वखरी गल है। अगर साड़ी सोच किसे नूं बेगाना समझदी, गुरु दी नजर विच कोई बेगाना नहीं। भगत जयदेव केंदली पिंड विच पैदा होए, जिस तरह के कल आपां विचार कीती, छोटी उम्र विच माता पिता मर गए, माता पिता दे चलाणी दा मन ते बह बड़ा गहरा असर होया, माता पिता दे चलाने दा मन ते गहरा असर होया, छोटी उम्र तों ही वैराग लग गया। माता पिता दी याद विच गीत गाया करदे सन, पर माता पिता दा एहो ही वैराग हौली हौली प्रभु दा वैराग बन गया। फिर इन्हां दे चाचे ने तोखे दे नाल इन्हां दी जायदाद अपने नाम लिखाणी चाही, पर इन्हां दे चाचे दा ही घर सड़ गया। फिर भगत जयदेव अपना घर बार चाचे नूं दे के जगन्नाथपुरी वल चल पए। रस्ते विच जद बेहोश होके डिगे तां कृष्ण जी महाराज ग्वाले दा रूप धार के आए, भगत नूं दुध पियाया, होश विच लियांदा। भगत जी जगन्नाथपुरी दे अस्थान ते पहुंचे, इत्थे भगत जी दी बड़ी सुभा होण लग पई। तां इक पंडित अपनी लड़की दा रिश्ता भगत जयदेव दे नाल करके चला गया। भगत जी, ये जड़ी लड़की जिसका नाम पद्मा है, इसनों अपने नाल लैके हुण वापस अपने घर केंदली पिंड आ पहुंचे हैं। ये केंदली पिंड बंगाल दे विच है। घर आके अपना गृहस्थी जीवन शुरू कीता, और इत्थे ही आके भगत जी ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखना शुरू कीता,

श्लोक ना लिखिया जाए ग्रंथ पूरा नहीं होता। बड़ी कोशिश की थी पर कुछ भी सुझदा नहीं। ता भगत जयदेव ने अपनी घरवाली नु किया पद्मा एक श्लोक रह गया पर पता नहीं की गल है कोई अक्षर याद ही नहीं आता। ते जदों तक आखिरी श्लोक ना लिखा ग्रंथ पूरा नहीं होता। तू इस तरह कर तू प्रसादा पका भोजन तैयार कर मैं जरा नदी ते इशनान कर आवा इशनान करके आवांगा थोड़ा दिमाग ताजा हो जाएगा ते हो सकता है प्रभु की कृपा होवे ते आखरी श्लोक चेते आ जावे पर ना मोढ़े ते मारे है। भगत जयदेव इशनान करने वास्ते नदी वाल चल पे हैं पर सात संगत दूसरे पासे भाई गुरुदास जी बयान करते हैं लीला चलत वखाण दा अंतर जामी ठाकुर पावे। वो जिहड़ा ठाकुर है वाहिगुरु वो अंतर जामी वो सारा कुछ जानता है कि भगत मेरी सिफत विच ग्रंथ पिया लिखता है आखरी श्लोक इनू याद नहीं आ रहा भगत दे मेरा ही है जे इनू याद नहीं आता तो फिर मैं ही चला जाना। आखो सतनाम श्री वाह भगत जी घरों बाहर गए ता भगवान ने आप भगत जयदेव का रूप धारे उस तरह परना मोढ़े ते मारे है ते घर आ गए। पद्मा हैरान होके पूछ दी स्वामी जी तुसी ते हुणे इशनान करन गए सी वापस आ गए ते ओ भगवान सतनाम श्री वाहेगुरु सात संगत शब्द पढ़ते हैं ना करो सारे रसना पवित्र संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया रा। अपने भगतां दे काम वो आप करदा है ते भगतां नूं उहदे कोल जाण दी भी लोड़ नहीं आपे चल के आ जांदा है। शब्द है सारे जपो अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावे उठ के वो आप आ जाता है। ग्रंथ चुकया ग्रंथ सामने रखिया और सत्संग अपने हाथों दे नाल गीत गोबिंद ग्रंथ दा उस प्रभु ने आप श्लोक लिखिया ग्रंथ नु पूरा कीता ग्रंथ पूरा करके लवेट के एक पासे रखिया ते फिर बड़े प्यार नाल कहंदे ने पद्मा बड़ी भुख लगी है आखो सतनाम श्री वाहे। कितना प्यार कितना अपनापन है प्रभु विच तन हन ओदे भगत जिन्हां नूं प्यार नसीब होंदा है। साड़ी ते सारी उम्र नक्कां रगड़ रगड़ के गुजर जांदी ना जीवन बदलदा है ना कुछ मिलदा है। क्यों मत्था भी टेकदे आ कुछ भला कर लैने आ कुछ बुरा कर लैने जिन्नी नेकी कीती उन्नी बुरियाई कर ली उथे दे उथे ही रह गए ना अगा सौरे आ
ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਦਮਾ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਦਮਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ

अखर पढ़ प्रतीत कर, होय विस्माद ना अंग समावे, वेखे जाए उजाड़ विच बिरख एक अचरज सुहावे, गीत गोबिंद संपूर्णो पत पत लिखिया, अंत ना पावे भगत हेत प्रगास कर, होय दयाल मिल गल लावे, संत अनंत ना भेद गणावे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि संतां विच उस अनंत परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, पर यह भी याद रखना संत ओ जिन्हां दे जीवन भगत जयदेव वर्गे हैं।

हम बन बन जाऊं और मैया कारण कारण कमन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके चरदास आसन।

परम सरकार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानक सर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी साध संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी छल, फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीयां लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं आउंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए, शायद 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बुलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए? दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे, बाबा इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह, पुछो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी, नानसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामण चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पानी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे जिया नहीं जा।

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नू पकड़दा। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई।

बनारस जाके तप करे, उल्टे लटक के तीर्थां ते तप करे। अगन दह, अगन क्या है? अगन दह कहते ने साड़ना। अगर कोई बनारस जाके तप करे, उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे, अग्नि विच अपना शरीर

बराबर कोई किस तरह हो सकता है। इस वास्ते के है भाई उस परमेश्वर का नाम जप, उदा सिमरन।

बदलावन दे। मैं ते इक रमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने